दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई है पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महला पंजवा।

साज सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे माल खजाना थे हो कर हर

कार सतगुर प्रसाद रा गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनस पागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा जन नानक एहो खेल कथन है तिन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रह नाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो एह विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देख तास उठ तावे।

0: भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा।
1: साधु एहो मन गहियो ना जाई
0: चंचल तृष्णा संग बस्त है याते थिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध कट ही के भीतर जेहे सुध सब बिसराई।

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औज सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुवार री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरु अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोई करे राख है आप वड्याई दे नील अनिल अग्न इक ठाई जल निवरी गुरबूज बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई पुस्तत करह केते मन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआर री महला पहला ना मन मरै न कार्ज होय मन वस दूता दुरमत दोय
मन माने गुर ते एक होए, निर्गुण राम गुण वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चेतवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना भावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाऊ।

अगत दुखे आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त ना होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुपाए, गुरमती नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मह साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज खाओ, प्रेम परायण प्रीतम राव, नदर करे ता बूझे नाव, माया मोह सर्ब जंजाला, मनमुख को चील कुशत बिकराला, सतगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निज करवासे साच समाए, जम्मण मरना ठाक रहाए, पूरे गुरते एहे मत पाए, कथनी कथो ना आवे और, गुर पुछ देखिया नाही दर होर, दुख सुख पाणे तिसे रजाए, नानक नीच कह लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चित वास, काम क्रोध अहंकार बनास, दूजा

0: निरपव जोगी निरंजन त्यावे अण दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप करै पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपव होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपव नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचै शब्द दर निसाने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दीसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी।

से अवरे परपंच ब्याद क्या गै कवरे भाई मिले सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मन धोई रहाउ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जारे सो उबरै गुर शब्द बीचा।

कामन हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी पत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंदे लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यो तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा।

के तखत सलाम, अद की तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाह वाहो जे वाट दिखावे, किसको वाह वाहो जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाहो जे मेल मलावे, वाह वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रत्ते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हम मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हौ हौ करत नहीं सच पाईए, हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाऊ, हौ मैं कर राजे बहुतावह, हौ मैं खपह जन्म मर आवह, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावै, निरपो कै कर ताड़ी लावे, हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी परम पलाया, जो उपजै सो काल संघारिया, हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया रहाऊ, माया मोहे देवी सब देवा, काल ना छोड़ै बिन गुर की सेवा, ओह अबनासी अलख अपेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो भूले जम का दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सहा मरह संचह माया दाम, मैं धन दीजै हर अमृत नाम, रैयत महर मुकदम सिकदार, निश्चल कोए ना दिसै संसार, अफरयो काल कूड़ सिर मार, निश्चल एक सच्चा सच सोई, जिन कर साजी तिन्ह सब गोई, ओह गुरमुख जापै ता पत होई, काजी सेख भेख फकीरा, वड्डे कहावह हौ मैं तन पीरा, काल ना छोड़ै बिन सतगुर की धीरा, काल जाल जेहवा अर नैणी, कानी काल सुनै बिख बैणी, बिन शब्दै मूठे दिन रैणी, हिरदै साच वसै हर नाए, काल ना जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौड़ी महला पहला, बोलह साच मिथ्या नहीं राई, चालह गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई, सच कर बैसै काल ना जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह है रहाउ, अपियो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते एहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै, गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत वरोलै, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतर गत कीनी, गत मित पाई।

आया माया साच संतोखे परम चुकाया जिनके मन वसया सच सोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच नाम मल खोई गौड़ी महला पहला राम नाम चित रापै जाका उपजंप दर्शन की जय ताका राम ना जपो अपाग तुम्हारा जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ गुरमत राम जपै जन पूरा तित काट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा धार जिनकै हिरदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मैं एको रवे मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवे सो बूझै जो सतगुर पाए हऊ मैं मारे गुर शब दे पाए अर्ध उर्द की संद क्यों जाने गुरमुख संद मिले मन माने हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभ हुए दयाल नानक जन करिए सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा हैन सुपाल है राख ले आत्म सुख तारा इत उतराखो दीन दयाला तो शरणागत नजर निहाला रहा जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अधियारा जग बिन सत हम देखिया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज कर महल अपार को अपरंपर सोई

आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजी पत पाई अंतर शब्द निधान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस, इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आपको, सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ, सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार, सूतक अग्न पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खा

नाम रपे मन निर्मल होय, सतगुर सेवै सूतक जाय, मरै न जन्मै काल न खाय, सास्त सिमरत सोध देखो कोय, बिन नामै को मुक्त न होय, जुग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल मह गुरमुख उतरस पार, साचा मरै न आवै जाय, नानक गुरमुख रहै समाय, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हिरदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा, पंडित हर पढ़ तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा, रहाउ गुरमुख विचो होमै जाय, गुरमुख मैल ना लागै आय, गुरमुख नाम वसै मन आय, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोध बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई, गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई, जो किछ कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै थौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यो लाए बह नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए, हम मैला इहु संसारा, नित तीर्थ नावै ना जाए अहंकारा, बिन गुर भेटे जम करे खुआरा, सो जन साचा जे हम मैं मारे, गुर कै शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोहे नटबाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपट।

हिरय अहंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोहे अत परम पलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी, गिरही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुरु सेवह सेवड भागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिसते उपजे देव मोह पयासा, त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मलाया, अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला, तापना चीन है बन है पांड पराला, मनमुख अज्ञान कुमारग पाए, हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे, बिख्या राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे, हौ मैं दूजा शब्द जलावे, ना मेरा ते हर गुण गावे, माया दासी भगता की कार कमावे, चरणी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा।

ताए साच ना छपै जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हम मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुरु दाता शब्द सुनाए भावत राखै ठाक रहाए पूरे गुरते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जा हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई।

तन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रवि

आए मन करहला अत निर्मला मल लागी हो मैं आए परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरै गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहु मन मह करत गुमाना तब एहु बावर फिरत बेगाना जब एहु हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको एहु जानस मंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इनह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, करन करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कह संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिस कह हृदय रविया सोए, मन पन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ, जास जपत भउ अपदा जाए, धावत

थाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हो मैं भागे, जास जपत वस आवह पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत एह तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए, जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दुष्ट जाके एक समान, जीता बोलन तेता ज्ञान, जीता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान।

जपना सहजे भोजन सहजे पाओ सहजे मिटियो सगल दुराओ सहजे हो आ साधु संग सहज मिले हो पार ब्रह्मन संग सहजे ग्रह में सहज उदासी सहजे दुबदा तन की नासी जा कै सह

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयू कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग करे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुखदा मार गवावे तिसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यो जुरै ता सबको मीत हर स्यो जुरै ता निश्चल चीत हर स्यो जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरै ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है, कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान, कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत, हर अबनासी।

कह पांत, जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवां, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसोआ पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ट फराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवां, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाव, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाव रहाव, गुर कै बचन सुन रसन वखाणी, गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग, गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निध, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा, गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाव बिनसत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रह आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्र

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे

हर मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिले मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंदन मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सौ जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मुंद मन अमाहो साजन रहसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरेगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे धन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैण कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा धन मिले मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा धन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे क्यों फूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै उन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोई ना पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सुन्यापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जीऊ

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम ले वो खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द सो।

गलहारू तन एक कलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजे भाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां फिर मुती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारी नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाए प्यारी गौड़ी महला तीजा।

कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै, गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइयै। गुर शब्दै मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारी, नानक कामण नाह प्यारी।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै। बिन फिर क्यों सुख पाईऐ, गुर आगै करो बिनंती। जे गुर पावै, ज्यों मिलै तिवें मिलाईऐ। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमे मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आगै जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिया जियो। आपे बख्शन हारा, अवगण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह।

जीवतियां इं मरिए खिन मह राम नाम किलविख काटे पये पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पये मनूरा स्त्री पुरख काम व्यापे जियो राम नाम की बिद नहीं जानी मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हम मैं तात संसारे जो आया सो सब को जासी उभरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम बखाने आप तरह कुल तारे नानक नाम बसे घट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे फिर दोष नाही सुख है दाते हों विछुड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तार हो कर आव हो नाह प्यारे हों माने अर्पी सब ताने अर्पी अर्पी सब देसा हों सिर अर्पी तिस मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करे कामण मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो बजी वधाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरखे उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है कर्म है फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मन है एक जी अवर सबराली मन है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल किनको लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधी है जम पंत बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधी है कल मलै दहता शुद्ध करता दिन सरैन आराधु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर
भगत वत्सल बिरदाया। भगत वत्सल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईऐ, ताम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया, बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी, करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू, सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी, बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला, विसंबर देवन को एक है सर्व करै प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किसै, काल कंटक लोभ मोह नासै जी जा कै प्रभु बसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उदम करेहा, मनाए लह हर कंतै मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह है साधु मंतै। सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई, एह रीत भली भगवंतै। नानक जरा मरण पै नरक निवारै, पनीत करै तिस जनतै। सुन सखिए एह भली बिनंती एहो मतांत पकाईऐ, सहज सुभाए अपाद रहत होए गीत गोविंद गाईऐ। कल कलेश मिटै भ्रम नासै मन चिंदिया फल पाईऐ, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम त्याईऐ। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागण देखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता सेवड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया। सुन सखिए मेरी नींद पली मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बावन अखरी महला पंजवा सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा। गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करना जोग, नानक एको रब रहया दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कारन आद मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन आपह सुनत आप ही जासन। आपने आपह उपायु आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह असथूला
लखी न जाई नानक लीला कर किर

है एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुख कियो अकारा एक सूत पुरो मनहारा भिन भिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल भांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू भांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसै भरम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहा पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ है सुरगना आछ है अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापहता हूं जो एक शाड़ अनकत ना जाहू जा कह ही दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एकै को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारू कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माय सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपे पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वा का अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिखशोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म

न बुझे सो प्रभ सदहु संग लेखै गणत ना छूटी काची भीत ना सुध जिसे बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना रे रे दरगाह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देव वाह महली पावह तू बासा जन्म मरन नह हुए बनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राते अहम बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मे मरना ज्यो ज्यो हुक्म तिवें त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लावो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना सलोक लाल गोपाल।

लवै न को एक है आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

या भवजल करना यया जन्मना आवे सो एक नाम ले मन है परो यया जन्मना हारी है गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जां कह हिरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के मीत गुरपुरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धिया ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खत शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह दिस भ्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कस दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमागिरी भी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेलह बिगसह आनंद स्यों।

करी, नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माही, सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम अरोग पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रवो हो, सास सास जप नीत, कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कश बंद, ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए, छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोई।

दास्त मारे दास दासन के पानी हारे सच्चा शार होत तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शाड सयानप बहु चतराई संतन की मन टेक टकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई सलोक जोर जुल्म फूल है कनो काची दे विकार हम बुद्ध बंधन परे नानक नाम छुटार पौड़ी जज्जा जाना हो कछ हुआ बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ जो जाना हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जाना मैं कथनी करता व्यापारी बसधा ज्यो फिरता साध संग जे हो मैं मारी नानक ता को मिले मरारी सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध कारहा तुझे ना व्यापई नानक मिटै उपाद पौड़ी चज्जा चूरन मिटै तुमारू राम नाम स्यो कर व्यवहारू चूरत चूरत साकत मुआ जा कैरदै होत पाओ बीया चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई सलोक यतन करो तुम अनक बिद रहन न पावो मीत जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत पवड़ी जन्या जानो दृढ़ सही बिन सजात एत गणती गणो ना गण सको ऊठ सधारे केत न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिए संग ज्ञान होया बिद सही चित झूठो माया रंग ज्ञान तो सोई सं

ज्ञान कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग नानक ते उस्तत करो न्याहू कियो संयोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए नानक मनो ना बिसरे गुण निध गोविंद राय पौड़ी टहल करहो तौ एक की जाते बिरथा ना कोय मन फन मुख ही है बसे जो चाहो सो होए टहल मैल ताको मिले जाको साध कृपाल साधु संगत तो बसे जो आपन होहे दयाल तोहे ताहे बहु पवन बिन नावे सुख नाहे तलह जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बनासे कद के सलोक ठाक ना होती तिन्हो दर जेह हो वो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ ठाह नाही जो सगल त्याग एक लपटाई ठहक ठहक माया संग मुए वाकै कुसल न कतहू हुए ठांड परी संत है संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया सलोक दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

आद संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिर ढूंढन या मन माहे संग तोहार है प्रभु बसै बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए तहत तहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीजी है आत्म जीतै कोवे हों मैं अनस्यो लर मरे सो सोभा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेहे सूर तन वेश ना को जाने आपनु एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन करे एउ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो।

वासुदेव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराय पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासुदेव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगल ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा राड़ मिटै संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेह मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बीचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारी, तुम समरत अगणत अपारी, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पये, मन तन पये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी, खखा खरा सराहू ताहू, जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू, खरा निमा ना होत परानी, अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी, भावै खसम तां वा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता, असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे, शरण परहो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग, नानक लय समाए पौड़ी, सस्सा सियानप छाड़ इयाना, हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना, सहस भांत करह चतुराई।

0: गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत नरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव याद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। यह श्लोक आद अंत पढ़ना।
1: गौड़ी सुखमनी।

प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछु सुझै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा।

आसन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी,

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

संत सब लसै, संत का संग वड पागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक

पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल ना जावे हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि।

जाता मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल सृष्ट सा।

मान सगल कटा को देव दान करण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात

आहले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बसत तिसे आगे राखे प्रभ की आज्ञा माने माते उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर दर्ब को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अप

ते रहत सब कछ जान आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाई थान थन अंतर रहे आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिस को सिमरत परम गत पाव है जे प्रसाद बस है सुख मंदर तिसे त्याहे सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहो तिस रसना जेहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावे है तिसे त्याग कत अवर लुभावे है।

मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझ

ऐसा प्रभ त्याग अब रकत लागु हो, गुरु प्रसाद नानक मन जागु हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पाप को मूल।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

कर सकर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अब महान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी संगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ने धावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्मज्ञानी हम बुद्ध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस

पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै जिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत ना पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख ना कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट

भाव है, प्रभ भाव है, बिन सास्ते राख है, प्रभ भाव है ता हर गुण पाठ है, प्रभ भाव है ता पतत उधार है, आप करे आपन विचार है, दोहा श्रेय का आप सुहामी, खेल बिगसे अंतर जामी।

है, इसके हाथ हुए ता सब किछ ले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचे, जे जानत अपने आप बचे, परमे फूला दह दिस तावे, निमख माहे चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मह नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु ना आवे।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मा।

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए बिसराम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

तृण समान कस संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ता का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, हिन मह हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब धारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई तब लग

को उठत आवे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृपतावे, खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके हाथ कहां विचार।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाय संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखे ना कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत किरपाल किरपा जे करे नानक संत संग निंदक पी तरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन कै दुखन काग ज्यों लवे संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जले।

नाही। नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक

नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ

तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोए, उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कि

बिरथा जन नहार, जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बनिहार। अष्टपदी

भोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम मैं थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाचो धूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहीं, सगल

पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाम, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान,

मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत तां की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत बीचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

माने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो हो जस जेह बा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने स्यो रह समाए जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिस की महिमा कौन बखानो।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाई है, नानक ऐसा गुरबत भागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग ना लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपहु होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा धारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। यहु तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नाम

0: नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण हुए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी।
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। इउं रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनक अपावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहु मन।

जन्म जन्म के कल विख जाहे। आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो। सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव। गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हों मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल। चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावे है सच धना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगाह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख।

मन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग, बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहिया सतसंग हजूरी, जिसका साथन लिया मलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बेखते काढै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करहो इहो काम, आन त्याग जपहो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपहो अवरहा नाम जपावहो, भगत भाए तरिय संसार, बिन भगत

पेख दर्श सुख हुए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला कोहु पावै संग, एक बस्त दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच अकार, तेहो गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई

अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दुहू पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हू बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगर निर्जोग जिस भावे तिस आपन नाई लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुले ज्यो बलाव हो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्थार जान तिस भावे तां सृष्टि अपाई।

नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब तां कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोई ना मारे सो मुआ जिस मनहु बिसारे तिस तज अमर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपालै जीन बहु भांत जो जो रचियो सुत सहत्यात जिस भावै तिस लये मलाई भगत करह हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाई इसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा

नानक फल पावहु, फलत पलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जप

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल तां कै निकट ना आवत काल अमर पए अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सघट माहे अनकरंग नाना दृष्टाहे नौ

हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रह सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख मान करन करावनहार प्रभ जान अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाय जिस भावै तिस लये मलाय कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

किनै कछ करा, आप भला करतूत आत्मी की, आपे जानै अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकी गत मित कही ना जाए।

है तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक।

गाव हस्तपदी पूरे गुर का सुने अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उदा।

पर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे। जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै।

तिस बिन अवर ना जाय, जो चाह है सोई मिले, नानक हर गुण गाय, गोविंद जस गाय हर नीत।

नानक संत निर्मल भये, जिन मन वसिया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संघारै नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यों बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसियो पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक ना।

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बसे।

अंत मन मह चितव पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाई नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाई।

नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम। इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया। इन बिद वर्त संपूर्ण भया, धावत मन राखे एक ठाई। मन तन शुद्ध जपत हर नाय, सब मह पूर रहे पार ब्रह्म।

नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल पौड़ी, द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो ताजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है, पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है, गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय, नानक

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिन विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट

नाम पौड़ी 14 चार कुंट प्रभे आप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रवया प्रवेक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तह बसह दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान। श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पई

हूँ मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब स्यों, गुण गो

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरो हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश को दृढ़ तिसका हुए उदहार इलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पर

आहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार होमे मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सो हन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहें सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सज्जन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनों दया सदा हुए सतगुरु अंदरों निर्वैर है सब देख ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन

ये बजाए। नानक दुही श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा, एक मन एक वरतदा, जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां, जे घर वत हो साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै, अहंकार ना विचों जाए। अहंकारियां नो दुख भुख है, हथ तड है घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहे, मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया, तिस सतगुर मिले प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटिया, मिल संगत स्वर्ण होए जाए। जन नानक के प्रभ तू तनी, ज्यों भावै तिवें चलाए। पौड़ी, जिन हर हिरदै सेविया, तिन हर आप मलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगण शब्द जलाए। अवगण विकण पल्लरी, जिस दे सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने, जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए। वड्डी वडियाई वड्डे की, गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा, सतगुर विच वड्डी वडियाई। जो अन दिन हर हर नाम ते आवै, हर हर नाम रमत सुच संजम। हर नामे ही त्रिपतावै, हर नाम तान हर नाम देवान। हर नामो रख करावै, जो चेत लाए पूजे गुरमूरत। सो मन इच्छे फल पावै, जो निंदा करे सतगुर पूरे की। तिस करता मार दिवावै, फिर ओह वेला ओस हथ न आवै। ओह अपना बीजिया आपे खावै, नरक भोर मुहे कालै खड़िया। ज्यों तस्कर पाए गलावै, फिर सतगुर की सरणी पवै ता उबरै। जां हर हर नाम त्यावै, हर बातां आ

जिन्नी सतगुर पुरख त्याया जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत तराया महला चौथा सारा दिन लाल चटिया मनमुख होरे गल्ला राती ऊंगै।

नवी सूत सब ढिला मन मुखा दै सिर जोरां अमर है नित देव है भला जोरां दा आखिया पुरख कमाम दे से अपवित अमेर खला काम व्यापेक सुध नर से जोरां पुछ चला सतगुर कै आखिया जो चलै सो सत पुरख भल भला जोरां पुरख सब आप अपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक भल भला पौड़ी तू वे परवाह अथाह है अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद त्याएं दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिया सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे से कूड़े आर कूड़े चा

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर काया।

हार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जां करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निहचल नित बख्शे चढ़ै सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करतै आप पचाया जन नानक गुण बोलै करते के भगता नो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चै पिछों दे आख्या कम ना आवै अद विच फिरै मनमुख वेचारा गली क्यों सुख पावै जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै ता अपिहो पीवै शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावै सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावै महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावै उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दोख लह जावै फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावै जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख कोले मन खोटे दइए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखै नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गूहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो वेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहा वेमुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वेमुख सुने नफरे पौली पौंदी फावा हुए कै उठ घर आया अग्गै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिले ता वहती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचै मार पचाया।

से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े आरे गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हाथ एना वेचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पोत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सुवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पोत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निदान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे बड़ियाई जगत भी आपे आण तिनको पैरी पाए डरियै तां जे किश आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आण निवाए अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए सतगुरु की वडियाई नित चढ़ै सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर घरी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे। तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे। नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया। नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै।

सुना हुई विस खादी तत्काल मर जाए। आई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई हर दर कियां बातां आख सुनाए। महला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका। मुंह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके। नित भंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही। तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही। उना दा आख्या को ना सुने नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी उना अगे पिछे थाउ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह रहंदी खुंदी सब पत गुआही। ओ अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर तिन का दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चित लाही। तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही। जन नानक नाम अराद तू तिस अपड़ को ना सकाही। नावें की वड़ियाई वड़ी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही। महला चौथा जे होंदे गुरु बह टिकिया तिस जन की वड़ियाई वड़ी होई। तिस को जगत निमिया सब पैरी पया जस वर्तिया लोई। तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई। गुर की वड़ियाई नित चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई। जन नानक हर करते आप बह टिकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट ना ले गुरमुख सौदा जो करे। हर वस्त संभाले नाम निदान हर

0: हृदय है जिन हर बसिया मन माहे हर दर गहती मुखी उज्जले तिनको सब देखन जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको पवो कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुट्ठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सिओ तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए
1: से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अरादिया आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जान दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपूरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पहु सब गवाए सी जिन रखन को हर आप होए होर केती चाक चाक जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई।

है क्यों संतो निर्मल हुए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग सियो सच सौदा हुए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

राग सुलखणी जे खसमै चित करे पाणे चले सतगुरु कै ऐसा शिंगार करे सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे ज्यों उबली मजीठे रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे रंग चलूले अतरती

उठा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया ओए पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई बिछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिखिया बेकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर भिजे जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजे तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजे तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जा गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुरसिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लद्दो वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथै नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो ओए मारे।

माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस भावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी तू करता सब किस जानदा जो जिया अंदर वरतै तू करता आप अगणत है सब जग विच गणतै सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनतै तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलतै सतगुर नु मिले सो हर मिले नाही किसै परतै सलोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाइय चित क्यों सास ग्रास वसारी है बहंदियां उठदियां नित मरण जीवन की चिंता गई एहो जियड़ा हर प्रभ वस ज्यों भावै त्यों रख तू जन नानक नाम बखश महला तीजा मनमुख अहंकारी महल ना जाने खिन आगे खिन पीछे सदा बलाइय महल ना आवे क्यों कर दरगाह सीजै।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाऊ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाऊ, ओह वेला हाथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणतै कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर पुरख निर्वै।

दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कसात ओह पाप कमावे, क्या ओह सुने क्या आख सुनावे, अन्ना बोला खोए उजड़ पाए, मनमुख अंधा आवे जाए, बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी, जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास, ओए वल छल कर झट कढ दे, फिर जाए बह कूड़े आरा पास, विच सच्चे कूड़ ना गड़ई, मन वेखो को निरजास, कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन, कर आपे आहर संत सहाई नानका, वरतै सब जाहर महला पंजवा, मुंडो भुले मुंड ते कितै।

कौन किस नो रख है, नानक तिस शरण आगती, जो पुरख अलख है। श्लोक महला पंजवा, नरक घोर बहु दुख घणी, किरत घणा का थान, तिन प्रभ मारे नानका, होए होए मोए हराम महला पंजवा। अवखद सबे कीतेन, निंदक का दारू नाहे, आप पलाए नानका, पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवा, तुस दिता पूरे सतगुरु, हर तन सच अखोट, सब अंदेसे मिट गए, जम का भो छोट, काम क्रोध बुरे आईया।

गुमान कर है मूड गुमानिया विस खादी मरिये आए लगे नी दे थोड़े ज्यो पक्का खेत लुनिये जे कर्म कमाम दे तेवे हो पणिये जन नानक का खसम वड्डा है सबना दा धणिये सलोक महला चौथा मनमुख मूलो भुलिया विच लब लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अनदिन गुदरे शब्द ना करहै विचार शुद्ध मत करतै सब हिर लई

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों भावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर गावे।

मन तन नित भाव नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लाव ग्रह तन सब पवित्र हुए हर के गुण गावो हर नाम व्यापारी नानका वडभागी।

ना लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदारन पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर भेटै नानका जिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाओ मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा एक निरंजन राव रहिया पाओ दुइया कुठा हर नानक मंगै जोड़ कर प्रभ देवै तुठा श्लोक महला पंजवा जा चढ़ी सा सार जो जा चंदी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्धा मन पछाणु विरलो थियो जोड़ नहारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़ी दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिया गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया हर

सच एक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस। निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए अन तन बहुत उपजिया। रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय। पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा जीवन पद निर्वाण।

तन रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

सब निदान घर जिस दै हर करे सो होवै जप जप जीवह संत जन पापा मल धोवै चरण कमल हिरदय वसह संकट सब खोवै गुर पूरा जिस भेटीऐ मर जन्म ना रोवै प्रभ दर्श प्यास नानक घणी किरपा कर देवै सलोक डखणा महला पंजवां भोरी परम वंजाए प्रिय मोहब्बत हिक।

तन फुटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की करही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूध कहो कबीर जो ब्रह्म बीचार है तो ब्राह्मण कहियत है हमारे गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कब

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग

कीजै जो आपन जीजै। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवन हारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, तां सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परै मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मरह संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर साम

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सह

सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ। कहो कबीर सुख सहज समावो, आप ना डरो ना अवर डरावो। गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जियो केह घर जाता, शब्द अतीत अनाहद राता। जिन राम जानिया तिन्ह पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया। ऐसा ज्ञान कथै बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी। रहाओ सो गुर करहो जे बहुर ना करना, सो पद रवहो जे बहुर ना रवना। सो ध्यान धरहो जे बहुर ना धरना, ऐसे मरहो जे बहुर ना मरना। उल्टी गंगा जमन मलावो, बिन जल संगम मन महनावो। लोचा समसर एहो व्यवहारा, तत विचार क्या अवर बिचारा। आप तेज बाए पृथ्वी अकासा, ऐसी रहत रहो हर पासा। कह कबीर निरंजन त्यावो, तित घर जाओ जे बहुर ना आवो। गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत ना पाया, राम भगत बैठे घर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द परगासिया। अब कैसे मरूं मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावूं खोजत तन मह ठौर ना पावूं लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाऊ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त

जब लग रात तब लग नहीं नेहो रहाओ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन धन गृह।

चौड़ कत बोड़ी हर सिंह तोड़ बिठिया संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकसियो नीर सो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना पई महतारी जेहे नार राम भगत नह साधी जनमत कसना मूह अपराधी रहाओ मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे।

नहाऊं। तिनकै सद बलिहारै जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाऊ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तव अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहो मनह दयापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई,

बूझै बूझनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै फांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव तेरह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एको ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहु सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में।

न जाना, जिसका भरम गया तिन साच पछाना, इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पियो, यह मन दीन भय सुख देव, जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुआर री अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी, एक नाम कल्प तार तारी।

कपि रे जी न लाज लाज तो हे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छड़ाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

सूतक सूतक ओपत होई गन में सूतक मुए फोन सूतक सूतक परज बेगोई कहो रे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता रहाओ नैनो हो सूतक बैनो हो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई हासन की बिद सब को जाने छूटन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिन ना होई गौड़ी।

धारी उपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरख केह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुनह ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गराव है ऐसे लोगन स्यो क्या कही है जो प्रभु किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरू भर पानी तेह निंद है जेह गंगा आनी बैठत उठत कुटल

सतगुर प्रसाद जीवत पितर न मान को मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जा।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहु घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवरना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाऊं आप छुटकावन ते बांधे।

किछ नाही, पांच तत तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए।

रहाउ। खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी पौड़ी, गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिय तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हूं लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ जां तिस पावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सार गपानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन शाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तव जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठोर ना ठायो कहो कबीर भज सार गपानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयमो क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखीय विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विद निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जिह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक बसेरो पंख को

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय। एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवीजय। राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा। माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन। मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तोहे चरण मन लागो सारंग धर। सो मिले जो बड़ भागो रहाऊ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण।

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदौरा रहाओ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निर्भउ तरन तारन राम राया रहाउ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत होए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा न रहाऊ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर।

याद, बावन अक्षर लोक त्रै, सब कछ इन ही माहे, ये अखर खिर जाहिंगे, ओए अखर इन मह नाहे, जहां बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल तह मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओह है तस लख ना कोई, लह लहूं तो क्या कहूं, कहूं ता को पकार, बटक बीज में रब रहे हो, जाको तीन लोक बिस्थार, लह लहंता भेद शै, कछ कछ पायो भेद, उल्ट भेद मन बेदेओ, पायो अपंग अशेद, तुरक तरीकत

आद मैं जाना, लिख अर मिटै ताहि न माना। ओंकार लखै जो कोई, सोई लख मिटना ना होई। कक्का किरण कमल मह पावा, सस बगास संपट नहीं आवा। हर जे तहां कुसम रस पावा, कह कहां कह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा। खसमह जान खिमा कर रह, तो हुए निखियो अखै पद लह। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात ना तरी काना। रह बिहंगम कतह ना जाई, अगह गह गह गगन रहाई। कग्गा कट कट निमसै सोई।

यह है शत्रपत पासा शक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो तन

है न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

बसेरा अर्दह उर्दह मंज बसेरा अर्दह चाड़ उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई

बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पहो पान पुरो सौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध हुए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह, जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस।

रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा। लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनत न जाए परम सच पावे। अर जो तहा प्रेम लिव लावे, तो अलह लह लह चरण समावे। ववा बार बार बिसन समहार, बिसन

एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सुवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का तरहो ध्यान कतनी।

एक सागर महरम है कबीर, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत, बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सोहर का पाव रहाव, आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब, अहनिस अखंड सुर ही जाय, तौ अनहद बीन सहज महबाई, सोमवार सास अमृत चरै,

प्रीत, पंच चोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, नातर खरार सहराए, बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल में हर का बास, गुर मिल दो एक सम धरे, उर्द पंकल।

माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै थावर थिर कर राखै सोई जोत दी वटी घट मह जोई बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम।

योग की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

रे मोसौ को न कह समझाय जाते आवागमन बिलाय रहाव बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जेह साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हिरदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर्व होए वो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह।

भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति जिनसी, माया जिन उपाय, कर कर देखे कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, फिर हुक्म

कर्ता सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संत हो जी सब

निरंतर जी हर एक को पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जा।

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जो

चित तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसे मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला काल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजहवाज नारद नाचे कल का पाओ जति सती कह राख है पाओ नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

कही है, सर्व निरंतर रव रहया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आज्ञा अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा भया, रतन उपाय तरे खीर मथया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन

बाद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजे जन्म जन्म किस लीजी लीजे रहाओ मन की मत मता गल मता जो किश बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै की चै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया।

हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जां सहु मिलिया तां जानिया तिहों लोका हमे शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव।

एक बहु करे दुख बिकिया सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर धन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरे सिफत सलाह।

जाय, नानक अस्थिर नाम रजाय। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासे परमल रूप। उजल मोती चूग हंस, सर्व कला जगदीसे अंस। जो दीसे सो उपजे बिनसे, बिन जल सरवर कमल ना दीसे रहाव। बिरला बूजे पावे भेद, साखा तीन कह नित भेद। नाद बिंद की सुरत समाई, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवंतो, राजन राज सदा बिकसंतो। जिस तू राख है किरपा तार, बूढ़त पाहन तार है तार। त्रे भवन मह जोत, त्रे भवन मह जानिया। उल्ट पई घर घर मह आणिया। अहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिनकै लागै पाए। आसा महला पहला, गुरमत साची हुज्जत दूर। बहुत सियाणप लागै धूर, लागी मैल मिटै सच नाए। गुर प्रसाद रह लिवलाए, है हजूर हाजिर अरदास। दुख सुख साच करते प्रभ पास रहाओ। कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाई, नानक विचों।

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, तां कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन ना।

सात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यों जल अंब ऊपर कमल निरारी। बुरा भला कहो किसनु कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

अठसख मज्जन हर सरीद गुरमुख निर्मल मैल ना लागे नानक हिरदय नाम वड्डी तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे है विच हों मैं परम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ताको लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारी मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाई मनसा मन है समाई नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाई आसा महला पहला किसको कह सुनावह किसको किस समझावह समझ रही किसे पढ़ावह पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रही ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अपर

चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊं हौ बलिहारे तां कह जाऊं नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देहे जपी तेरा नाउ दरगाह बैसण हुए थाउ जा तुद भावे तां दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे तां सतगुर मिले प्रणवत नानक भवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी सिंचत भाव करे ही सबना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे ले जेते जी तेते सब तेरे बिन सेवा फल किसे नाही दुख सुख भाणा तेरा होवे बिन नावे जियो रह नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जुगत नाही कह नानक जे वाले जिया जह भावे तह राख तू ही आसा महला पहला ताया ब्रह्मा मन है धूती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती हर नामा जस जाचो नाऊ गुर प्रसादी।

नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना को।

सो प्रगट जाई, सच निशान है ठाक न पाई। पंडित पढ़े बखाण है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यो तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आस नरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रहै समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हौ पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरड़ाई सगली सौदी टोटा आवै नानक राम नाम मन भावै आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहु जागै हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहु जागै हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

सच समावे आसा महला पहला धूप दे तित सरवर डै पहले नवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डुबियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां फीऐ जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू न खूटस नाहीं आसा घर चौथा महला पहला।

धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पाए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाऊ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल रु

रहाउ। हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले, कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे, मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले, तीर्ज धरी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे, मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे, ज्ञान राओ जब सेज आवे ता नानक भोग करे, आसा महला पहला कीता हुए करे कराया, तिस क्या कहिए भाई जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई तेरा हुक्म भला तुद पावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई, जे को दरगहा बहुता बोले नाओ पवे बाजारी, सतरंज बाजी।

ध्यान करत आवै कर करनी कस पाईऐ पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अमियो चवाईऐ बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद सूचै भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ है करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारै कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारै आसा मोहल्ला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै वगै

सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरभउ दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई,

आए हर एकी मत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊंची बाणी ऊंचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विणनावे दुख दर्द शरीर सतगुर भेटे ता उतरै पीर बिन गुर भेटे।

मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस हुए, पीवत रहे पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभु साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई।

हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गवाई।

झूठ मोह पाखंड वकार रहाउ, सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे, सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर धार, नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच संभावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपहाय। गुर कै भै साचै साच समाय। बिन गुर पूरे भगत ना होए। मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए। मेरे मन हर जप सदा त्याए। सदा आनंद

अवर ना कोई गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरै भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जियो आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते पिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझे सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाइए गुर विचार बिन नामे जम कै वस है मन मुख अंद गुआर हर कै भाणे जन सेवा करे बूझे सच सोई हर कै भाणे सलाहिए भाणे मने सुख होई हर कै भाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गुआया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन

भाग गुरमुख हर पाए, नाम हीन कालक मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीव आया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम दिवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख बखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सत गुर

माया मल धारी, विण गुण जन्म मुए अहंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

काई नाम रवया सब सास ग्रासा रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई।

कंधा, सबने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लाभ मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पालै घुंगरू ताला कब को बजावै रबाब आवत जात बार खिन लागै हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेलै पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे कब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे भाई हम जन के धोवै तो पाए रहाओ हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिवला।

लाए, से ही संत भले तुद भावे है, जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख नाराजै हर गुण, ज्यो आखै त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हरे अपने, गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुरा हो हम मैं रोई है, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर हुई है। गुरपूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाउ पूर्व लिखे देहे से आए माया, चलन अज के कल तुरहु फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया, जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा, जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया, जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया, रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ। हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ, नानक आपे आप खुआईऐ। गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ, राग असावरी घर सोलवा के दो महला चौथा। सोधं एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं। सतगुरु मुख को हर नाम बताया, हम हर बिन किन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सर्वन सिमरन हर कीर्तन, हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सर्वर बिन रह ना सके, तैसे हर जन क्यों।

मान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कैताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख शरण जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

कोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुरदेव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरह तिन हुए ना आपै, एक सती कहावै है तिन बहुत कल पावै। हम हर राखे लग सतगुरु पावै, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुर राखे दे।

वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन एहु मन लपटानी सहा व्यापारी द्वारे आए

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जो पिरह शिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पक

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए।

पंजवां पंच पदे प्रथमे तेरी नीकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन मह अभमान सोहनी स्वरूप सुजान विचखन

हारी, इस धरती मह तेरी सिखदारी, सोना रूपा तुझ पह दाम, सील बगारियो तेरा काम, जाको दिष्ट मया हर राये, सा बंदी ते लई छिड़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओह काया, सब रूप सब सुख बने सुहागन,

रहना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर हुई।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पाल दिन समो को कब हो ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे रहाओ चार पहर चहो जुगह समानी रैन पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी ब्रह्म भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी।

सुखन दान अमृत सार साधे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाव तोट न आवे नखुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी। जो जन्मे सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर हुए प्रभात। माया मोहे सोए रहे अभागे गुर प्रसाद को विरला जागे। कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां नौ निद तेरे।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत पंडा।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुवारिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

रहाउ। तृप्त अगावन साक्य नाय, अठसठ मज्जन संत तुराय, सब मैं जानो करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा, बुद्ध परगास भई मत पूरी, तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़त कोर अंधकूप में,

कहे, जिसह परापत तिस ही देह, नानक चाख पये बिस्माद, नानक गुरते आया साध, एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे, आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावह, ता प्रीतम होवह मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

आप सहाय गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिनसिया थाउ ताप गया बचन गुर पूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांशत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावह किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारी जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने अपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी।

कर कर डूबे खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म मैं सोई सगल जगत धन अंध को जागै।

गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाऊ, माया की किरत छोड़ गवाई।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द वज।

सुनावै, कर संग साधु चरण पखारै, संत धूर तन लावै, मन तन अर्प धरे गुर आगै, सत पदार्थ पावै, जो जो सुने पेखै लाए श्रद्धा, तड़का जन्म मरण दुख भागै,

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइय।

मुक्त पय अंधकूप महाकोरते बाहा पकर गुर काड लिए निरपव पय सगल पव मिटया राखे राखन हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

काजर कोठ मह भई ना कारी, निर्मल बरन बनियोरी, महामंत्र गुर हृदय बसियो, अचरज नाम सुनियोरी, कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुकाने हो रा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुर सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदास।

गुरमूर्ख जाना आसा महला पंजवा तीरथ जाओ ता हों हों करते पंडित पूछो ता माया राते सो अस्थान बतावो मीता जा कै हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र वेद पाप कुल विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी कौ जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की

चित आवे। सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा। हर हर जपत

काट काट जपी जै गुर प्रसाद हर अमृत पी जै दिन सरैन हर कीर्तन गाइए सो जन जम की वाट ना पाइए आठ पहर जिस विसरह नाही गत होए नानक तिस लग पाई।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सच शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

कोई सगल श्रेष्ठ अवां के चरण मल धोई जो प्राणी काहू न आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम साध संग मन

सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलाब देहे जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग

पये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रत्न जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे।

खोया, आनंद रूप सब नैन अलोया, आसा महला पंजवा, भुगत सियानप किशु ना जाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, करन करावन हार प्रभ सोए, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी, जप तप

पंजवां जिसका सब किस तिसका होए तिस जन लेप ना व्यापै कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करै सोई।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो

ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहूरी, प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे,

आनंद ने मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया, साध संग जपियो हर राए, नानक जीवै हर गुण गाए, आसा महला पंजवा दो तुके नौ, उनकै संग तू करती केल, उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाव, उनकै संग तू ग्रह महमाहर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मान महत,

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो दिन सरहन, ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद। साध संग नानक बख्शिंद, आसा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग भूले।

संबाहा निकसिया फूक ता होए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी। वड परवार पूत अरतियां मोहे पचे पच।

बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी डीठी अगरक उसके वडे ठगाऊ छोड़े नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

चली ताका संग बांचह सुरदेव अमोग दर्श सफल जा की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संतहा टहल दी जय गुणतास आसा महला पंजवा सगल सूख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुण गाम महा पवित्र साधका संग जिस भेट त लागे प्रभ रंग गुर प्रसाद होए आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकी गात मित

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहा। पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे

बाहां पकर हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, इहा उहा कामना प्राणी, संत तृपता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले हे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जाकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जाका दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नदर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बाणी रसना चाखे वड्डे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला।

तेरा जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान न माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अन टेक है सो जानहु काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुरु पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपा कितै काम न आई है टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड ना कोई गुर पुठे ते पाई है सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहां गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्याव हो सद सदा हर हर मन रंगे।

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैण पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

पंजवा लाख भगत आराध है जपते पियो पियो कमन जुगत मलावो निर्गुण बिखई जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहु नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाऊ

तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

साहा साह नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सरब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यो भावे त्यो राख राखण हारिया तुझ बिने अवर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है जिस मन बुठा आप तिस ना वसारी है जो कुछ करे सो आप आपन पाणिया भगतां का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना झूरी है नानक दर्स प्यास लोचा पूरी है आसा महला पंजवां क्या सो वह नाम वसार गाफल गहलिया कितनी इत दरियाए वंजन वहदिया बोहे तड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी।

कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई।

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घना नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

हर रंग माणीय आवहो संत मलाह हर कथा कहानियां अन दिन सिमरह नाम तज लाज लुकानिया रहाउ जप जप जीवा नाम होवे आनंद घणा।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेट हर राए री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

हम शूटे अब उना ते होए हम ते शूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम।

सर्व सुख पावों आज्ञा पावों के ना पावों एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुलपावो अगम अगम अगाद बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

मार्ग पंथ समारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभु पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्स पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्तर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाउ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर तू

गंधण वहन सुन है उर्जा वह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयु बूजी उल्टाया पारतान पारतान पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म स्यों रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे सरन प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पलखिन सीजै अरजादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ धंध दुर्गम दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाटे बहुर बहुर जनमाते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे कहो नानक दिन रैन त्यावो मार काढ़ी सगले अपादे इउं जपियो भाई पुरख बधाते।

कहां के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंच हो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

महा भौजल लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिव लाओ रहाओ वेद शास्त्र जानते।

डोल महा दुख पाया, बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस, पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत, सास सास त्याय।

आनपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाये संगी ऊंच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख बड़ी वड्याई जप जीवै नानक नाओ आसा महला पंजवा उदम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आ।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यों ज्यों राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया।

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाव महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से परगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाव मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा।

मोहिना, कारण करना तारण धरना, एकै एकै सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोहिना, आसा महला पंजवा, हर हर नाम अमोला, ओह सहज सुहिला रहाओ, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओह अगह अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओलाह अलख लखाया गुरते पाया, नानक इहो हर का चोला, आसा महला पंजवा, अपनी भगत नवाहे, ठाकुर आयो आहे रहाओ, नाम पदार्थ होए सकारथ, हृदय चरण बसाहे, एहे मुक्ता एहे जुगता, राखो संत संगाहे, नाम त्यावो सहज समावो, नानक हर गुण गाहे, आसा महला पंजवा, ठाकुर चरण सुहावे, हर संतन पावे रहाओ, आप गवाया सेव कमाया, गुण रस रस गावे, एक है आसा दर्स प्यासा, आन ना पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे, आसा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम त्यावो हो हृदय बसाव हो, इस बिन को नाही, प्रभ सरनी आईऐ सर्व फल पाईऐ, सगले दुख जाहि, जीअन को दाता पुरख बधाता, नानक घट घट आहि, आसा महला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम त्यावै सर्व फल पावै, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावै।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवा घर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखया बिखे लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेख ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अभरात्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निध नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

सरै हां, तिस बिन क्यों सरै हां, गुरु को कुर्बान जाओ हां, नानक जपे नाओ मेरे मना। सावरी महला पंजवा, कारण करण तू हां, अवरना सुजै मूह हां, करह सो होइय हां, सहज सुख सोई।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नवा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रसयो दस हूं दिस धावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की मानस जन्मे अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अब कट सरवर नावे बकै न बोले हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे रस सत झोल महारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावे सतगुर शब्द क्रोध जलावे गगन निवास समाध लगावे पारस परस परम पद पावे सच मन कारण तत् बलोवे सुपार सरवर मैल ना धोवे जैस्यो राता तैसो होवे आपे करता करे सो होवे गुर हे वसी तल अगन बुझावे सेवा सुरत बेभूत चढ़ावे।

कीमत पाई। सब दुख तेरे सुखर जाई, सब दुख मेटे साचै नाई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझै ता सच निहाला। अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला। त्रे भवन सूजै आप गवावै, बाणी बूझै सच सुभावै। शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा। आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान। मन मानै सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार। लेख असंख अलेख या

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिर अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई।

को रोवे दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आप निर

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता मीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत भीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरी जै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम भुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तासे, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गत गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

नानक राम नाम मन राता, आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बानखंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हौमे कौरा, रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कंटक मारे सच पेले, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा, इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रे भवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापे, गुरमुख चीने हर प्रभ आपे, मन बैरागी होमे त्यागी, कट कट मन साधबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखे, दर कर महली।

खाए किए। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख एहो मन भगती जागे। अनहद सुन मानिया शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी। एहो मन निर्मल दर घर सोई, गुरमुख भगत भाओ धुन होई। एहनस हर जस गुर प्रसाद, घट घट सो कब याद जुगाद। राम रसायन एहो मन माता, सर्ब रसायन गुरमुख जाता। भगत हेत गुर चरण निवासा, नानक हर जन के।

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे विस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की।

दुख तिस लागे। जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

ताहा संचहि धन जाय बिन हर भगत ना पवई थाए बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिनसै मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राके बंद ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर तीजा।

भाण होवै किस थै जाए रुआई हुक्मी हुक्म चलाए बिगसै नानक लिखिया पाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला कर अठवां अष्टपदियां।

साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

दिया मन मुख पत खोई रहाउ जिन्नी ए को सेवया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर सरनाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई।

टेक आधार तू दर सेवक दरवान दर्द तू जानही भगत तेरी हैरान दर्द गवावही दरगाह नाम हदूर गुरमुख जान सी वेला सच परवान शब्द पछाण सी सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से मनहु छोड़ विकार सच्चा सच दे सच्चे सच्चा नेहो सच्चा लाया आपे करे नियाओ जो तिस पाया सच्चे सच्ची दात देह दयाल है जिस सेवी दिन रात नाम अमोल है तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना हित त्रिग चतराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाउ आवन जावन तौ रह पाइए गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रह तन तन जस गाए आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा हों मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सो जिने गुर शब्द विचारा ज्यों अंधले हाथ टोहण।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ता के रूप ना जाही लखणी।

परम पद पाई है, कथे अकथ कहानी, तू करता किया सब तेरा, क्या तू करे पनाणी, जां को नदर करह तू अपनी, साई सच समाणी, नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी, जां तुद पावे ता गुरमुख बूझे, होर मनमुख फिरै आणी, चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए, पढ़ पढ़ करे विचारी, ताका हुक्म न बूझे बपड़ा, नरक सुर्ग अवतारी, जुगह जुगह के राजे किए, गाव है कर अवतारी, तिन पी अंत न पाया ताका, क्या कर आख विचारी, तू सच्चा, तेरा किया सब साचा।

कराई, आपे गुरमुख नाम वसाई, आप भलावे आप मार्ग पाई, सच्चा शब्द सच समाई, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलाणी, बिन नावे सब फिरे बहुराणी, तीन भवन मह एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाओ दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सबाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा।

हर जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए होमे मार, हर जपिए पह सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई है बड़ी वड़ियाई, एको नाम चेत मेरे भाई जग

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नावै कोई ना मनिए मनमुख पत गुआई जमपुर बद्दे मारी है बिरथा जन्म गुआई नामे की सब सेवा करै गुरमुख नाम बुझाई नाम हूं ही नाम मनिए नामे वडियाई जिसनु देवै तिस मिलै गुरमती नाम बुझाई नानक सत

मन वह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वस आवै गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवै रहाउ सुहागनी आप सुआरियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दियां।

दे आज्ञा जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपै ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिलिया रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगति सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

है बहुविध श्रिष्ट उपाई हुक्मी कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार इकना बख्शे है मेल लह एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस आपनी तिस नू भावनी लाए सत संतोख ए संजमी।

मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ ना पहुंचिया, कथ कहने अंत ना पाई, गुरते कीमत पाई है, सच शब्द सोजी पाए। इहो मन देही सोध तू, गुर शब्द भी

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक।

शब्द रहे आ भरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह फिरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

साथ चरण कमल बोहित भय लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद भावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद।

पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारी दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरह प्यारी सो क्यों तजना जाय एह तन वेखी संत पह प्यारी प्रीतम दे मलाए सुख सिंगार बिखिया के फीके तज छोड़े मेरी माय काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाय जो जन राते राम स्यों प्यारी अनत ना काहू जाय हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाय अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराय जन्म मरण दुख कटिया प्यारी।

जो सुख दर्शन पेखते प्यारी मुख ते कहन ना जाई साची प्रीत ना टुटई प्यारे जुग जुग रही सुमाई जो दुपावे सो भला प्यारी तेरी अमर रजाई नानक रंग रते नारायण प्यारी माते सहज सुपाई सब बिद तुम ही।

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाय। जो तू कराव है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारे। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी, घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नानक।

सत्सै सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया।

जलिया जमराज के ही रूह आए माया कै संगल बंध लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहे तई किया कगे काल सेवक जे काल है शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम अपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहे आ दे दे वेखे हुक्म चलाए।

समूड़े क्यों छूत जम पाकड़िया बब्बे बूझ नाही मूड़े परम भुले तेरा जन्म गया अणहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जजे जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावेगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवेगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदे पिछों दे गल चाटड़िया ससे संयम गयो मूड़े एक दान तुद कथाई लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत तान खादै तेरा जन्म गया मम्मे मात हिर लई तेरी मूड़े हो मैं वड्डा रूप पया अंतर आत्मै ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया कक्के काम क्रोध परम्यो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया।

साए मूड़े, पिछले गुनाह सब बख्श लया, हा है हर कथा बूझ तू मूड़े, ता सदा सुख होई, मनमुख पढ़े तीता दुख लागे, बिन सतगुरु मुक्त ना हुई, हरारे राम चित कर मूड़े, हृदय जिनके रव रहया, गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता, निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया, तेरा अंत ना जाई लखिया, अकथ ना जाई हर कथिया, नानक जिनको सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया, राग आसा महला पहला, संत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद जोबन बालड़िए, मेरा फिर रलियाला राम, तन फिर नेहो कणा, रस प्रीत दयाला राम, तन पिरह मेला हुए स्वामी, आप प्रभु कृपा करी, सीजा सुहावी संग पिरके, सात सर अमृत भरी, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन अमाहो, मुंद सहज सुनो नड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर पावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै, तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है, गुण है वस अवगुण नसै, तुद बाज एक तिल रह ना साका, कहन सुनन ना तीजे, नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी, रसन रस मन पीजे, सखी हो सहेलड़ी हो, मेरा फिर बन जारा राम, हर नामो वणन जड़िया, रस मोल अपारा राम, मोल अमोलो सच कर ढोलो, प्रभ भावै ता मुंद भली, एक संग हर कै करह रलिया, औ पुकारी दर खली, करन कारण समरथ श्री तर, आप कारज सारे, नानक नदरी तन सुहागण, शब्द अब साधारे, हम कर साचा सोहिलड़ा, प्रभ आयड़ी मीता राम, रावे रंग रातड़िया, मन लियड़ा दीता राम, अपना मन दिया हर वर लिया, ज्यों पावे त्यों रावे, तन मन पिर आगे शब्द सुभागे, घर अमृत फल पावे, बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतुराईए, पाई मिले मन पानी, नानक ठाकुर मीत हमारी, हम नाही लोकानी, हासा महला पहला, अनहदो अनहद वाजे, रुण चुन कारी राम, मेरा मनो मेरा मन राता, लाल प्यारी राम, पन दिन राता मन बैरागी, सुन मंडल घर पाया, आद पुरख अपरंपर प्यारा, सतगुर अलख लिखाया, आसन बैसन तिर नारायण, तित मन राता विचारी, नानक नाम रते बैरागी, अनहद रुण चुन कारी, तित अगम पुरे, कहो कित बिद जाइए राम, सच संजमो सार गुणा, गुर शब्द कमाइए राम, सच शब्द कमाइए निज कर जाइए, पाइए गुणी निदाना, तित साखा मूल पत नहीं डाली, सिर सबना परधाना, जप तप कर कर संजम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए, गुर सागरो रतनागर, कित रतन कनेरे राम, कर मजनू सप्त सरी, मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ भाई, पंच मिले विचारी, राम क्रोध कपट बिखिया तज, सच नाम उरतारी, हौ मैं लोभ लहर लभ थाके, पाए दीन दयाला, नानक गुर समान

त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजे दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई नानक कह विचारा आसा महला पहला मेरा मनो मेरा मन राता राम प्यारी राम सच साहिब आद पुरख अपरंपरु धारी राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चे सत्यारु आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हूं मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा।

सिरजनहार जीउ सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारनहार जीउ दुख बसारनहार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बिचार जीओ तू सबनी ताई जितै हौ जाई साचा सिरजनहार जीओ जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जीओ तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जीओ ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जीओ जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जीओ जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोहो कुर्बान जीओ ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाइए मान जीओ हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नवनिध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जीओ जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै विटोहो कुर्बान जीओ नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जीओ इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जीओ जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहे से सुकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहे जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शंत कर तीजा तू सुन हरना कालिया की वाड़ी है राता राम दिख फल मीठा चार दिन फिर हुए ताता।

खाहे चूटा शब्द बिन बेतालिया सच कह नानक चेत रे मन मरह पवरा कालिया मेरे जीअड़िया परदेसिया कित पवह जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की पासह जम जाले राम मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया भगत कर चित लाए हर सिऊ छोड़ मनो अंदेसिया सच कह नानक चेत रे मन जीअड़िया परदेसिया नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाने सतगुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगध अचेतिया हर नाम भगत नारद साचा।

तुम करहु तां फिर सह खुशी न आवी। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा।

सहो जान है, मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम हर हर नाम मेरे प्राण वसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजे है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दातै ज्योति ज्योत समाणी मनमुखा मनमुख मोए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचे हैं भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला तरिए जाया वै गुर सरनाई।

तब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए रत्ना रत्न पदारथ बहु

लागे तिन हाथ चढ़िया, निर्मोल करत ने अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा, समुंद वरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई, आसा महला चौथा, चिम चिमे चिम चिम वरसै,

राम निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया राम, गुर परचह त्याया।

घट अंतर सब तृष्णा भूख गवाई मन तन शीतल शिंगार सब हुआ गुरमत राम परगासा नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिन्नी रामो राम नाम वसारिया ते मन मुख मूड अपागी राम किन अंतरे मोह व्यापै खिन खिन माया लागी राम माया मल लागी मूड पै अपागी जिन राम नाम नह पाया अनेक कर्म करह अभमानी हर रामो नाम चुराया महाबिखम जम पंथ दुहेला कलू खत्म हो अंधियारा नानक गुरमुख नाम त्याया ता पाए मोख द्वारा रामो राम नाम गुरु राम गुरमुखे जाने राम एह मनुआ खिन ऊब पयाली भरमदा इकत कर आणै राम मन इकत कर आणै।

भनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपियै सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो।

हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया। से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधु,

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख हुई अंतर बाहर हर प्रभ एको। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई। हर दरगाह पावे मान जियो, सत जुग सब संतोख सरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो, एता जोगे आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया। मन हृदय क्रोध जलाए दियो, मन हृदय क्रोध महा बिसलोद। निरपता वह लड़ दुख पाया, अंतर ममता रोग लगाना। हों मैं अहंकार वधाया, हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर। देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो, एता जोगे आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाए जियो, तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है। अत किरिया कर्म कमाए जियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया। दोए पग टिकै टकाए जियो, महाजुद्ध जोध बहु कीने। विच हों मैं पचै पचाए दियो, दीन दयाल गुर साध मलाया। मिल सतगुर मल लह जाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए जियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया। हर कीरत हर शांत पाए जियो, हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई। हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नावे। सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया। मन हृदय नाम लखाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए जियो, आसा महला चौथा। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुर मस्तक भाग प्राण जियो। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नामे हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नामे हर सोहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। तिन हम चरण सरेव हैं, खिन खिन पग धोवे हैं। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

मत जम पकड़ ले जाए जियो। तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उभरे हर हर ध्यान जियो। हर सोभा पाई हर नाम वडियाई, हर दरगाह पैंदे जान जियो। हर दरगाह पैंदे

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहोड़ मरना होई, हर हर नाम अमर पद पाया।

जियो जग उपजै बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो। ता की गत कही ना जाई अमित वडियाई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब में रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप नरेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो।

सब तेरे शब्द समाए दियो। सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए। शब्द रहया समाई तेरा, शब्द अगोचर गुरमुख पाईए।

तेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू सरन हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

ताए गुर हर मार्ग चाली, मेरा मन तन नाम आधार है, हम मैं बिख जाली, जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली, गुरमुख प्यारे।

आई। आसा महला चौथा, इन मस्तक तुर हर लिखिया, इन्ना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कट।

ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहरों

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल पाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी।

जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा, आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु।

सुख सद हुई, जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्हा मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती।

हर जुग जुग भगते अपाया, पैज रख दाया या राम राजी, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहं

करे, मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे, नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे, भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हर पुर धारे, फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चातरक बूंद जिवें मन

हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मो।

सहज भया गृहवास आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणे साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियों मन मानिया।

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

सरसे अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुर मिल जीता राम गुर मिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता, घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे, बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुर सरन तरिये अपने प्रभ पावा, आसा संत महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे, मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे, हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे, गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे, प्रियो सहज सुपाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा, हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा, ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजे, गुर पूरे अपदेसिया जीवन

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना।

ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर टिक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करी जय इहो मन दीजै हत लाइय चित।

कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हर सियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घनी कद दिनियर देखी है। कोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिय। हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरनी पड़िय चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जै। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया

मन हर चरण गिहि जय, ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जाको खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी। सगल तुझ आराधते दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार संकर जटा तार, चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी। अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करहो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है। दुख दर्द भ्रम जाए संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। भेटत साधु संग जमपुर नह जाई है। दुख दर्द ना पौ ब्यापे नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल पल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दै वसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोज।

सहज सुभाई भगत कारज सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

माई अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावै नानक वखाणै गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुरबचन जाने जा को राम पतार ताके आनंद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण भी जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया, समर्थ अगत अपार निर्मल।

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल धर्म कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत न

ते संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमते आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्ब सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपौ पये पराण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा हीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रहे अगन सागर पये सीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरों एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जाग है संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जाग है, नाम सिमर है अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। ताज मान मोह बिकार मन का, कलमला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जाग है, हर दास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया।

प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखगामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच्छ पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां पुछ है कहो कंत नीचाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज बटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या तन पसम टेरी जमै हेरी काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी रहे ओ पैनन खाया नानक कमाणा संग जुलिया नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये नित पाप कमायन पापा कमाणे छड़ह नाही लै चले कत गलावया हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी तरण देह ला पया खिन मह खसम चेतना आयु।

दृष्ट सचंती बिनवंत नानक मेरी इच पुनी मिले जिस खोजंती नस मनु हो किल विखो हो करता घर आया दूत है दहन भया गोविंद प्रगटाया।

धर्म करे दूत भय पलायन, धर्म धीरज सहज सुखिए, साध संगत हर भजे, कर अनुग्रह राख लीने, मोह ममता सब तजे, गह कंठ लाए गुरमलाए, गोविंद जपत अगायन, विनवंत नानक सिमर स्वामी, सगले आस पुजायन, निध सिद चरण गहे तां केहा काड़ा, सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा, गह पुजा लीने नाम दीने, कर धारम

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दोख कमाते वलवंच कर उदर पर है मूर्ख गावारा सब किश दे रहे।

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल मही अल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

मिल बैरागी हिन रहन प्रिग तन तिस बिना पलका न लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अन दिन प्रभ मना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद बचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श

उगवह सूरज चढ़ है हजार केते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी माने।

आए रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ भौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

ताल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जित तन पाई है नानका से तन हो है शार ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्तै ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झट पाए।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

कितहु उपजे कित संजम एह जाय। हमें एहो हुक्म है पय किरत फराह। हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनहो इत संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

ए सबनाहा जिन करता करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस दे बान अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै

कप्पड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मियां कूड़ बीबी खाप होए खार, कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियों

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार ना सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाण बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए नानक पाहै बाहरा पूरै रंग ना सोए भै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक।

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत

की लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाऊ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहया। महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ नानकता का दास है। सोई निरंजन देव। महला दूजा एक

अच्छा साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लये परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग की।

मुख सूत जत गंडी सत वट एहो जने जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए धन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौंकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मोआ ओह झड़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल

फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होए जोर महला पहला नाए मन्ने पति उपजै सालाही सच सूत दरगाह अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे बत्तै वट तागे अवरा।

आई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लये जाहे तरंदा महला पहला मानस खाने करह निवाज।

आग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद हुना ते आवह ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिट वे मत पिट एह अन्न असाडा फिट तन फिट फेर करेन मन जूठ चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवै तां सच पाईए पौड़ी चितै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोह कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़िय है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

आज ना कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोय, नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय। महला पहला, मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे। महला पहला, सभो सूतक भरम है।

पया तेता जित मुख नाम ना उच रह बिन नाम रस खाए नानक एवं जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगण वे पंडो हो ऐ दोस्ती पंडो चले राह पांड मोआ पांड पाली है पांड हो ऐ बंदान सो क्यों मंदा आखी है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजै पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोई जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आख है अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गारब हंडी है मंदा किसे ना आखी है पढ़ अखर एहो बुझी है मूर्ख है नाल ना लुझी है सलोक महला पहला नानक फिक्का बोले है तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदी है फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगाह सटी है मोहे तुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखी है पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पाटे अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन नेहु लगा रब सेती देखने विचार रंग हसह रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

तै धारी है, देख है कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनु विसारी है, अपना

सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना, सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल ना कीचे ही, दे लम्मी नजर निहाली है, ज्यों साहिब नाल ना हारी है, ते वेहा पासा टाली है, किस लाहे उपर काली है। श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी, नाले गर्भवाद गल्ला करे कड़ेरिया, खसम ना पाए साध, आप गुआए सेवा करी।

नाल आने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगा

किसनो अगली ओह वजहो पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

आपस तेजो पाईऐ नानक सा करमात साहिब तुठै जो मिले महला दूजा एक ने ही चाकरी जित भौ खसम ना जाए नानक सेवक कहडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत ना जापनी हर ता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़ै बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यो करी पकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई इक चुल्ला रहन चढ़े एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े।

आप तिस विच जंत उपायिक दिख थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो जित पै

इन भेद अपियो ना चूके कही ना उपज उपजी जाने भाव अभाव बिहूणा उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संत।

आदि मुख हूँ अपरस कहावे है, सदा सदा फिर है अभमानी, सगल कुटुंब डुबावे है, जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे, कहो कबीर जिस सतगुर भेटै पुनरप जन्म न आवे आसा।

आ मेरा मन पाया हम पूत तेरा तू बाप मेरा एक ठाहर दोहां बसेरा कहो कबीर जन एको बूझिया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकत इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो।

आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पांच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। तट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

पै सूता बुझ गई अगन नानक सियो धुआ रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाउ टूटी तंत ना बजैर बाब भूल बिगारे अपना काज कतनी बदनी कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा

खंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया तां पी चीत ना राखस माया। चिंत पवन

सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुरक दो समझावो आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ जिस पा

सुनडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूल।

अव पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूरत के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम।

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्द फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सोकृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया, मुग्ध कह धन मेरा, जम का दंड मूंड मह लागे, किन मह करै निवेरा, हर जन उत्तम भगत सदावे, आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै।

कर फीके। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीके। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक बूंद ना बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो

चराए, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई।

समुंद सीखाई, ते रावण कर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, ते रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

नाब कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो अस वड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या

चार चरायु कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के दुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोर त्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जै पास ना देख आग, काल पास ना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब खुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका, राम नाम बस होई, अब मोहे लाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना, गया परम सब छूटी।

मह तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे ता ते जन्म अलेखै रहाव साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

मेरो पेर हौ हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ। धन पेर एकै संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा। धन

रहु रहुरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाउ। कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवै, ना ही राम अयाना, पूजो राम ए

कैसे ओए नर फिर जोनी आवह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर कौ स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं ईबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्व मही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

हर जन्म दैला गुरु उपदेश पहला संत है कह प्रसाद नामा हर पेटला आसा वाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

आनंद सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम अवगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपरे जस कीरा सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कहरवदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाऊ जब कछ पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना बिन

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओ कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म।

वध भागा रे चेत चेतस की ना दयाल दमोदर विबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राख ऐसा खसम हमारा कुमी जल माहे तन तिस वाहा।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया, कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया, सेख हयाती जागना कोई थिर रहिया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां, से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़िया, चले चलन हार बचारा ले मनो, गाडेंदिया छे माह तुड़ंदिया हिक खिनो, जिमी पुछै।

आधार, जा की भगत करह जन पूरे, मुन जन सेवह गुर विचार, रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन, एका जोत मरार, गुरमुख होए सो अहनस निर्मल, मनमुख रहन अंधार, सिद्ध समाद करह नित झगड़ा, दोह लोचन क्या हेरै, अंतर ज्योत शब्द धुन जागै, सतगुर झगर नबेरै, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, साचे महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करहो निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा, कर पहला

गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साख अंत होए सखाई हर दिन होर रास कूड़ी है चलदियां नाल ना जाई हर मेरा धन मेरे साथ चल जहां हूं जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा हुआ कहना कछु ना जाई गुजरी।

या राम राम सबको कह कहे राम ना होए गुर प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोई अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर तिस कदे ना विसरे हर हर करह सदा मन चीत रहाउ हृदय जिन कह कपट वसे बाहर हूं संत कहा है कृष्णा मूल ना चुकई।

जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राये तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हउमै मारे, तां हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, जिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह है सदा सुख होई, रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवे साच बुझाए, बिन पारस है पूज ना हो वई, बिन मन परचे अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओह मार्ग पाए, नानक बिन नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए, गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजे।

आप ना पछाने सच ना तरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा हम बिनु करूं गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साग

आग को अमृत रस पाईए, तृप्त विष्टा खाए मुख गो है, अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस हो है, नानक तन तन बड़े बड़ पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है, गुजरी महला चौथा, हर जानी उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोलह पारे उपकारी, जो जन सुने सरदा भगत सेती।

मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर

कथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया होवा वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नाम हर सिंह चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहे जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा चौपदी कर पहला, एक ओंकार।

सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

चारी अठ सठ मजन कर इशनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग धायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवां हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी हर हर तार पुराना हर तन मेरी चिंत वसारी हर तन लाहया धूखा हर तन ते मैं नव निध पाई हाथ चरयो हर थूका खाव हो खर्च हो टूट ना आवे हलत पलत कह संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवां जिस सिमरत सब किल विखनासह पितरी होए उदारू सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जग।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटै।

पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

वाला करने हार पछाता, जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला, कीमत कहन ना जाई। गुजरी महला पंजवा, दो पदे घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पवित्र लिए करे अपने, सगल करत नमस्कारु। वर्ण जात को पूछे नाही, बांछ चरण रवारु। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी की जय। जन को अंग नरारु रहाउ, साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारु, नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु। मुक्त भयो चमियारु, गुजरी महला पंजवा। है नाही को बूजन हारु, जान कमन पता। शिव ब्रंच अर सगल मोन जन, गहना सकाहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा, सुनिए अवर अवर बिद बुझिए।

पंजवा मुन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे है माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु पांती

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंदेशा।

तह परम अंधेरा नाही, ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही रहाऊ, सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पई करते की, और आस बढ़ानी लाही, गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस हर भोर।

मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आग्या टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटे सगल उपाद रहाओ मात पिता सुत मीत भाई किस बिना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कशनाया वै काम सरन साधु निर्मला गा

अटल अशेद अभेद स्वामी सरण ताकी आओ चरण कमल अराध हृदय एक स्यों लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया

मिल साध बचन गोविंद त्याई महा निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भये पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण।

पितर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कतह नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर

चरणारविंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परे ओ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावै त्रिह दस माल रखै जो नानक मोख मुक्त सो पावै केतो हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरै ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

काम क्रोध अहंकार तदियले, लोभ मोह तिस माया, मन तत अवगत त्याया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले,

दाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए माने अंतर

बूझ अंतर शब्द विचार, अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजै प्यार, नानक चातरक अमृत जल मांगै।

सोग बजोग बिसर्जत रोग पाई रे। गुर कृपा से भगत ठाकुर की, सतगुर वाक हृदय हर निर्मल, ना जम कान ना जम की बाकी रहाउ। हर गुण रसन रवह प्रभ संगे, जो तिस भावे सहज हरी। बिन हर नाम वृथा जग जीवन, हर बिन निफल मेक करी। ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर, निंदक गत नहीं काई। रोस करै प्रभ बख्श ना मेटै, नित नित चढ़ै सवाई।

आपन चाहे सो भगत कही है, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे, इस मन अंधे को मार्ग पाए।

बंदव पतत पावन देव पै त्रास नास कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोबिंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहा।

नानक हुक्म बुझ परवान होए तां फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा बिचन महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर भावै सतगुर कै भाणै वडियाई पावै नानक आप छोड़ गुर माहे समावै महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवै नानक जिसे आप वडियाई देवै पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरियै तारी अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी गुर

आई ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वारा।

सतगुर मिलया हो मैं गई जोत रही सब आई इहो जियो सदा मुक्त है सहजी रहया समाई पौड़ी।

वसयो मन आए त्रिग अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आए माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाए हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाए जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आए हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए नानक सतगुर सो तन सौंपे।

पाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जां होए खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर, हुक्म पीत ना मनाए सी। जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਖਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ।

नानक हुकम ना जातु खसम का, जे रहा सच सुमाए महला तीजा। एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाय, इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उ चक्का लै जाय। एहो हर धन जीए सेती रव रहिया, जीए नाले जाय। पूरे गुरते पाई मनमुख पल्ले ना पाए, धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आए। पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुर सूरा। गुणवंती सलाहया सदा थिर निश्चल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिन्ना दा जीविया, जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख हो मैं पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोई सुख ना पावे, अंत गए पछुताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस हऊ मैं विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरनी आए पाए। महला तीजा, मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाव। शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव, तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव। ओए धर्म रलाए ना रलन, होना अंदर कूड़ सुआव। नानक करता बणत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाउ पौड़ी, बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवे जाई। सतगुर की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाई है, विचों आप गवाई। कृष्णा भुख विचों उतरे, सुख वसै मन आई। सदा सदा सलाही है हिरदै लिवलाई। श्लोक महला तीजा, जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए। सबना उपावा सिर उपाऊ है, हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल शांत वसै, जप हिरदै सदा सुख होए। अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए। महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, हर पावह गुणी निदान। हर सुख दाता मन वसै, हऊ मैं जाए गुमान। नानक नदरी पाई है, तायान दिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है, गुरमुख पविता। अंदरों कपट वकार गया, मन सहजे जिता। तह जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता। आनंद नहर के गुण रवे, गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है, इको हर मिता। श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है। जे अन दिन हर लिवलाए,

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजै नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।

तिस गुड़ मिले, गुरमुख निस तारा सलोक महला तीजा। हो मैं ममता मोहनी मन मुखा नू गई खाई, जो मोहे दूजे चित लाई दे तिन्ना व्याप रही लपटाई। गुर कै शब्द पर जाली है तां एह विचों जाए, तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए। नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा। इहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवे जाए। हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय। जां हर बख्शे ता गुर मिले, अस्थिर रह समाई।

जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारे जाओ। वाहु वाहु गुणी निदान है जिसनो दे सो खाए, वाहु वाहु जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाहु वाहु गुरसिख नित सब करहु गुरपूरे, वाहु वाहु पावे नानक वाहु वाहु जो

तिस जेवड़ अवर ना कोई। वाहु आहु अगम काहु है, वाहु आहु सच्चा सोई। वाहु आहु विपरवाह है, वाहु आहु करे सो होई। वाहु आहु अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोई। वाहु आहु कर्मी पाई है, आप दया कर दे। नानक वाहु आहु गुरमुख पाई है, अन दिन नाम ले महला तीजा। बिन सतगुरु सेव

क्या किया ज्यों राजे राज कमावंदे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेवंदे अंत तिनी ना लहिया निरपो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटिया तिथे सोग वजोग ना व्यापई अस्थिर जागतिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किसे

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरै सज्जन पहुण्यो। बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा मिठा सो जो भावदा

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाओ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ आप।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन पन रत्ता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल पौड़ी जी की बिरता हो ये सो गुर पह अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर साध जना कै संग पवजल बिकम तर सेवहु सतगुर देव अगे ना मरहु डर हिन मैं करे निहाल ऊणे सुभर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर।

तवन्य मित्र असाढ़े से कांट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊची हूं ऊचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जां आपे होए दयाल ता भगत संग पाई।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवां राम रमोह बड़भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

दुख जाए। भगत तेरे दयाल ऊना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए।

कही ना जाए। गुर समरथ देव गुरपार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू कमान दिया सुख पुंच त्याए दिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग। नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता हुए ता काहे डरपिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आया चित निहाल साहिब बेशुमार तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किस तिस कै वस न कोई बाहरा सो भगता मन बुठा सच समाहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित जिसे पलाए आप मर मर जमे है नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाभ्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

पानी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल औतरै अरि बाई गोविंद नाम मत बीसरै रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल औतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल औतरै अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल औतरै अंत काल नारा।

मनोपिमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नाद नोत जसमरणे जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सो कृत कृतं पाव पूत भाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट पर ग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणं हर भगत निज निह के

अंतर जार। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। जो आवत सरन ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक सरन तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हम तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी। हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है। हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी। हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी। जन नानक सरन तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नकती। ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाओ। जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति। ज्यों नुगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती। नानक पतत पवित मिल संगत गुरसा।

अमृत सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हों आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलाव रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटाव ज्यो अपनो स्वामी सुख मान ताम है सोभा पाव दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमाव सर्ब सुख बड़े आई नानक जीवो मुखो बुलाव देव गंधारी प्रभ जी तौ प्रसाद भ्रम डारियो।

सेवा दर्शन दुख अवतारेउ नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारेउ काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारेउ माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधारेउ देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया।

नाम रसमाती महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाती सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराती।

हरहाउ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पह आहा तिने प्राप्त इहो निधाना जिनकै कर्म लिखा हा ते बड़ भागी ते पतवंते ते पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते।

प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटावह मर जन्म है मुग्ध ग्वारा अंध गुंग पिंगल मत हीना।

दुख कनेरै सके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम अराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भाद्यो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पाद्यो भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो भयो अनग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगाद्यो देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पा

जिस लाड़ लावै देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझै कबहु चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर मान बेग तहां उठ तायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो।

लाग हर चरनी लागो जिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनासे उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश है।

जाको उपजी छोड़ ना कतहु जाता रहाउ बैखत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

लाइय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुहि कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कौ बल जाइए जो सबना करे उदार।

पाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंदेतरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

जब चितवाऊ तब तुहारी, उन समाहार मेरा मन साधारी, सुन गावू गुर बचनारी, बल बल जाऊ साध दरसारी, मन मैं राखू एक असारी, नानक प्रभ मेरे करने हारी, देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ यह मनोरथ मेरा, कृपा निदान दयाल मोहे दीजै, कर संतन का चेरा रहा, प्रातः काल लागू जन चरनी, निस बासुर दर्श पावूं, तन मन अर्प करूं जन सेवा, रसना हर गुण गावो, सास सास सिमरों प्रभ अपना, संत संग नित रहिए, एक आधार नाम तन मोरा, आनंद नानक एहो लही है।

उपाय छोड़ न जाय सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाय रहाउ मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग न कतहु जाय अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम न समसर लाय मंदर भाग शोभ द्वार अनहत रुण चुन लाय कहो नानक सदा रंग माणी ग्रह प्रिय तीते सद थाई।

तारियो दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया कुल है समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पुत्र तास ग्रास उचारियो नानक उठ गई जगदीश पुनः पुनः बलिहारियो।

रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई, रवियारे रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संजम नहीं कार्य सार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, मिल संगत ताज अभमान,

कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर वेद उचरत दिन रात।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै, कर परपंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै, स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान धरै, कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै। देव गंधारी महला नवा, सब किश जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार, आद करी को नह राखै, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार, कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं की।

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी।

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम च घोले राम। गुरमत मन ठहराइया मेरी जिंदड़िए, अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। गरीब चुना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे आपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यो जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम, हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिय है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले है राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सहराम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम

राम जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए पार

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगाह सूबा पाइय जिनको बधात तुरहु लिखिया तिना रहन दिन लिव लाइय हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधी जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादी कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

तूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम। पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते। नित देहे चढ़े सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप। जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर।

चरण लग है, मन प्रिय प्रेम कणा, हर की भगत मंग है, हर भगत पाई है प्रभ त्याई है, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भग है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जप है, हर नार सुहागणी सब रंग माणी, रांड ना बैसे प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बडभागिया, सुख सहज सोवे है किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उदारनु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारनु, जो सरण आवै तिस कंठ लावै, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

निवास मन करमजन हर सरी सब किलविख नास मन कर सदा मजन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग।

अगम अपारु बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइय पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किस कह

सद मना, शुभ दिवसे आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊचे अगम अपारी, बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारी, बिहागरा महला।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो प्राणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभानी बीच ना कोई करे किरत घन विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

बंधन रहस करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन समरा

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई, है हों हों करतना त्रिशन बूझे, नह काम पूर्ण ज्ञानी बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे से चले, रसना अरादे एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो

अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

पाए, गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत शब्दे पाए, नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी, जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी, तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है, हर सुख दाता सबना गल्लां का, तिसनो त्याए दिया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है, जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है, सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़िए, हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे, जगत तरिया सब लोड़िए। सलोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए, जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का नाम वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे, जित पावै तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखै चलत सुभाए।

कहो बलिहार है जाओ महला तीजा। नानक तरवर एक फल दुए पंखेरू आहे। आवत जातना दी सही ना पर पंखी ताहे। बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहे निर्वाण। हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान। पौड़ी आपे धरती आपे है राहत। आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे। आपे ही बह खावे आपे जल आपे दे शिंगा। आपे चुली परावे आपे संगत सद बहाले। आपे विदा करावे जिसनु कृपाल हुए हरे आपे तिसनु हुक्म मनावे। श्लोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंदना पाप पुन संबंध। ममता मोह सो बंदना पुत्र कलत्र सो तंद। जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय। सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

0: आई।
1: गुर कै शब्द मन तन भिजे आप वसै मन आई। नानक नगरी पाईए आपे लय मलाय पौड़ी। आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथ आप भीजे आपे ही बह पूजे करता। आप परपंच करीजे आप परविरत आप निर्विरति। आपे अकथक थीजे आपे पुन सब आप कराए। आप लिप्त वर्तीजे आपे सुख दुख देवै करता। आपे बख्श करीजे। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छाड़ तू पहो कर झल गवाए। गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए। शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए। नानक काम

आपे खंड वर भंड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनों गुरमुख करे हरे आपे।

पर बुझै सब आपे, एक थै आपे करे आणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मरदाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईए नानका, थादे जाहे विकार। मरदाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी,

हर स्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए, नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई। फिर पाया घर आए पौड़ी, आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल ना भुलै कब ही।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे तां सद जीवन होए पौड़ी जां आप कृपाल होए हर स्वामी तां अपना नाम हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाय कीमत किनै ना पाईया कितै ना लया जाय गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आय नानक आप अमेव है गुर किरपा ते रहिया समाय आपे मिलिया मिल रहिया

नानक गुरमुख पाईए जा को नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आप हूं जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे।

प्राप्त होए। किस जोगी की नगरी सबको वसै पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी। आपे जंत उपायन आपे आधार

ते तृप्त भई हऊं तिन बलिहारै जाऊं। मैं की नदर ना आवही वस्त है हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया।

बंगड़ियाह जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़ियाह सब सहिया सहु रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगै गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई आओ।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहे आसमाई, नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग, वडहंस महला तीजा, पूरे गुर ते नाम पाया जाई।

ज्ञान आए, परम ने भूला फिरे संसार, मर जन्म जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

जिन तेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पिर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पिर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा।

कारेव रुवै माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेव धंधा रुवै मैल न धोवै सुपनंतर संसारू ज्यों बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरै राखी नानक सहज सुभाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी है।

सुखदाता नानक शब्द मलाए फिर हों चुनिया भी मिल है जे सतगुर लाग है साचे पाए वडहंस महला तीजा सुनियो हो कंत मेहली हो।

समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहेली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप

जन्म गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी फिर जग जीवन किसनो रोइए रोवे कंत वसारे सब जग आप उपायो आवन जान संसारी सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए सो फिर

आओ पौड़ी, तू आपे ही आप आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर ना दिया।

ऐसे मिलन वडियाईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाही प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सतियार नानक सतगुर की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख

खमनाई इस पे कह थाम हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाई शब्द रत्ते तिना सूजी पई दूजे भरम भलाए पया किरत कमावना कहना कछू ना जाए नानक ज्योतिष भावे।

मूल न हो गई अचिंत वत्सय मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सारे तीर्थ न आए सज्जन मिले सज्जना सच्चे शब्द सुपहाय।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाई प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुरु दाता सेवी है शब्द वसै मन आए मन तन शीतल शांत होए कृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे

नानक साई भली परीत जित साहिब सेती पात्र है पौड़ी हर इको दाता सेवी है हर एक त्याई है हर इको दाता मंगी है मन किंदिया पाई है जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है जिन सेविया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है नानक तिन विकटों वारिया जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याई है।

नानक नाम निदान है गुरमुख पाया जाय। मनमुख घर हुंदी वत न जाननी अंधे भौंक मुए बिल लाए। महला तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी। निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख भ्रम पौ भागी। नानक गुरमुख सदा सुख पाव है अन दिन हर बैरागी। पौड़ी ते गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। गुर सतगुर नाम दृढ़ आया तिना हूं मैं दुखदा भन्नी।

की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायर रूप है बिन नावै लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही।

होने गुरु का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सत्य सुबा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुरु की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावें सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सह

0: खलवाया। हर नामै की वडियाई कर्म प्राप्त होवै, गुरमुख विरलै किन्ह त्याया।
1: श्लोक महला तीजा। बिन सतगुर सेवे जगत मोआ, बिरथा जन्म गवाए, दूजै भाए।

हर नाम सखाई मित्र हमारा, हर नावे नाल गल्ला, हर नावे नाल मसलक, हर नाम हमारी करदा नित सारा, हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल हर नाम परवारा, जन नानक कहो हर नाम हर गुर दिया, हर हलत पलत सदा करे निस्तारा। श्लोक महला तीजा, जिन कहो सतगुर भेटिया।

हर नामो अंत छडाता, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, तन तन गुरु का पिता माता।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखियास पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज

पावन गई। हर का नाम गुरमुख किन्हें विरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। श्लोक महला तीजा, जगत अज्ञानी अंध है, दूजे भाई कर्म कमाए, दूजे भाई जेते कर्म करे, दुख लगे तन धाए, गुर प्रसादी सुख उपजे, जा गुर का शब्द कमाए, सच्ची बाणी कर्म करे, अन दिन नाम त्याए, नानक जित आपे लाए तित लगे, पहना किसु ना जाए। महला तीजा, हम घर नाम खजाना सदा है, भगत भरे भंडारा, सतगुर दाता जी का सद जीवै देवनहारा, अन दिन कीर्तन सदा करह, गुर कै शब्द अपारा, शब्द गुरु का सद उच्च रहै।

हर रतन है मुक्त करावन हारा। नानक जिसनो नदर करे सो पाई, सो होवै दर्श त्यारा पौड़ी। तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरणी जाए पया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया। तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाणे गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हठ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हठ भेख कर भरम दे,

पौड़ी, जिन उपाए जी तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाउ भोजन चाखिया, तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया, सब अंदर एक वरतै तिने विरले लाखिया, जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा, सतगुर नो सब को वेखदा, जेता जगत संसार, दिठै मुक्त ना हो गई, जिचर शब्द ना

0: मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर बिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई, निर्भउ निरंकार निर्वैर, पूर्ण ज्योत समाई। नानक गुरविण भरम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोठ महला पहला दुतुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंट चौबारा, सगल भवन की।

मैं मूर्ख किस दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै सूठ महला पहला, हों पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते, ठाकुर शरण तुम्हारी करता तू मैं मान निमाने, मान महत नाम धन पल्ले, साचा शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम पूरे होशे, तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते, हर रसना जप मान रे, तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे, अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे, अवर ना दिसै किस सालाही, तिसह शरीक ना कोई, प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई, सोठ महला पहला, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल ना कर्मा, जात अजात अजोनी संपहो, ना तिस भाओ ना भरमा, साचे सचियार विटोह कुरबान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचा शब्द नीशान रहाओ, ना तिस मात पिता सुत बंदप, ना तिस काम ना नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली ज्योत तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योत।

बिहारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सूरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो हो वेस भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव है घर अमृत घट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा कौ तावहु कर अवगुण पछताही जियो सर अपसर की सार ना जाने फिर कीच बढ़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नावहु काही जियो निर्मल नाम जपहु सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड त्यागहु सच गुर बचनी फल पाही जियो ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सूरठ महला पहला पंच पदे अपना घर मूसत राख ना साक है की पर घर जोहन लागा घर दर राख है जे रस चाख है जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कमन मत लागा नाम विसार अन रस लोभाने फिर पछताहे अभागा रहाओ आवत को हरख जात को रोवह एह दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग पगावै गुरमुख सो अनरागा हर रस ऊपर अवर क्या कही है जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहित जिन इहो रस खोया।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाईए।

जागत रहे तिनी प्रभ पाया। छबदे हूं मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी। ज्ञान तत बीचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया। हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धाम दा। दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर नाम।

0: साचै साच रखिया पुर धारी नानक नाम हूं गत मत पाई एहा रास हमारी।
1: तोरठ महला तीजा भगत खजाना भगतन कौ दिया नाव हर धन सच सोए खुट नाम धन कदे न खुटै नाही किने ना कीमत होए नाम धन मुख उजले होए हर पाया सच सोए मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए बिन शब्द है जग भुलदा फिरदा दरगाह मिले सजाई रहाओ इस देही अंदर पंच चोर वसह काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूट है मनमुख नहीं बूझ है।

कर कर विगुटे केहो चलै ना चल दिया नाल गुरमुख हो वै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चानन अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती।

हर पाई विचों आप गवाई भगतां का कारज हर आनंद है अन बिन हर गुण गाई शब्द रते सदा एक रंगी हर सियों रहे समाई हर जियो साची नदर तुम्हारी अपने दासा नू कृपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाओ शब्द सलाही सदा हों जीवा गुरमति भव भागा मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यो गुर सेव्या चित लागा साचा शब्द सच्ची सच बाणी सो जन अन दिन जागा महा गंभीर सदा सुखदाता किसका अंत ना पाया पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा ओ पाए गुर विचारा हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा नानक नाम रत्ता एक रंगी शब्द सवारन हारा सोठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन बिसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटोह वारिया सद ही तेरे नाम विटोह बल जाई रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होआ हर वस्या मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर सियों रहे आसमाई शब्द ना जान है से अन्नी बोले से कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी मान मुख मुग्द गोबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मिटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई।

आप राखै जो तेरे मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंत काल तेरा बेली होवे। सदा लिबहै तेरे नाल रहाव, दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावै। ना बूझै विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया। हरनाक्ष नखै बिदारी, प्रहलाद जन सद हर गुण गावै। हर जियो लए उबारी, आपस कहो

जै सो आप पछाणे हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई बिन भागा क्या पाईए। एक नदर कर वेख सब ऊपर जेहा भाव तेहा फल पाईए। नानक नाम वसै मन अंतर विचों आप गवाईए। सोठ महला तीजा चौथुके सच्ची भगत।

प्रणाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वड्याई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रव्या सब ठाई हृदय नाम अपारा जुग जुग बाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोई ना बूझे गुरमत।

नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाए मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुट है मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किछु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाई पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

केरै मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है पाई, हिरदै रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

हर रस साध ना आया, संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई, हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुरु दाता मेल मलाव हो, हर नाम देव हो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहज सुमाणी, पाया नाम अपारा, हर रस चाख मन निर्मल हुआ, गिल बिख काटन हारा। शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरन ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जाप है से। सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए। हर का नाम सच्चा मन वस्या,

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहू, आपे वणज व्यापारिया।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमणिया।

कर दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

जन नानक हर रस त्रापे सोठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तलाया आपे साह आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यार पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाउ आपे धरती आप।

प्यारे, ज्यों हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह बजाया, सोठ महला चौथा। आप

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत संग भए साधु जन हिरदय मिलिया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा पई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर स्यो प्रीत अंतर मन भेदिया हर बिन रहन ना जाई ज्यों मछली बिन नीरै बिन सै त्यों ना मैं बिन मर जाई मेरे प्रभ कृपा जल देव हो हर नाई हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया पाए सुपाई मनमुख भूखे दह दिस डोलह बिन नावे दुख पाई जन्म मरे फिर जोनी आवे दरगह मिले सजाई कृपा करह ता हर गुण गावे हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल भए है कृष्णा शब्द बुझाई सोरठ महला चौथा पंच पदा अचार चरे ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर ता भ्रम काटे आ जाई मेरे गोविंद अपने जन को देह वड़े आई।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाई, जन नानक अवर ना कोई, चौथ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौ जाती किस आराधी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरपहो निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मोहताजा रहा, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख सहज समाणी।

साध शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे, फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो परम पलावा कहियत, तिन मह उर्जियो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात, एहो खसम का किया, जाको कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत नाउ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सब ना करत उदारा, कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया, एहो पूरन तत बीचारा, सोठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बीचारेउ, राम नाम तत सारा, किल बिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बाणी रहाउ, मुकत भुगत जुगत सच पाईए, सर्व सुखा का दाता, अपने दास कहो भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता, सरवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय त्याइए सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई, वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

पंजवां कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरध प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा।

जोगे अंतर गुर नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

हम भलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे कहो नानक, हम यह हवाला। राख संतन कै पाछै।

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

आए अब कहां करे तू, जो फाट्यो सगलो लिखा महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

मन तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भानै अंतर बिद जानै, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूर्त गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवरदा।

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन कराव नहार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह माने गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जय कार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया।

सरनाय चौठ महल्ला पंचवा पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाय गुरपुरे की बाणी जप आनंद करहो नित प्राणी हर साचा सिमरहु पाई साध संग सदा सुख पाई है।

जीवै विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हो आ बेली सूठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हूं मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माध हो जिया संतो हो कट कट रहया समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थल रमैया आहयो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहया समायु सूठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाओ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुकी।

झूठ निंदा इनते आप छडावहो एह पीतर ते इनको डारहो आपन निकट बलावहो अपनी बिद आप जनावहो।

गुर पूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतह ना धावहु, सूरठ महला पंजवा, जाकै सिमरन सब कछ पाई, बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्यावहु, पूर्ण होवै काला रहाउ, सार संभालै नित प्रत पालै, प्रेम सहत गल लावै, कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै। सूरठ महला पंजवा, अबनासी जीयन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन कहो बर्तन, बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी सरन पया सुख पाई है, बहुड़े दुख ना होई रहाओ, वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई, तिन की धूर नानक दास बांचै, जिन हर नाम हृदय परोई। सूरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारै, सूका मन साधारै, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम बीचारै, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा रहाउ, समरथ पुरख पूर्ण बेधाते, आपे करनै हारा, अपना दास हर आप उभारिया, नानक नाम अधारा। सूरठ महला पंजवा, अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे नबेरो, बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेर।

पाप रोग गए गुरबचनी, मन पिछे फल पाया, मेरा गुर पूरा सुखदाता, करन कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, नंद बिनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुरबान सोठ महला पंजवा दुरत गवाया हर प्रभ आपी सब संसार उभारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा सहारी अपना बिरद संभारिया कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावहु मन तन देह सुखाली रहाउ पतत उदाहरण सतगुर मेरा मोहे किसका परवासा बख्श लए सब सच्चै साहिब सुन नानक की अरदासा सूरठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरनी उबरे कार्ज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरै अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करह मेरे प्यारी हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत भाखिया

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिय भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हर का नाम आधारु नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारु सोठ महला पंजवा मेरा सा

सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवां जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन भई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपुरे पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाओ अन दिन नानक नाम त्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता सोरठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो नह पति आया उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरी है उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़।

कल राखी जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख।

ब्रह्मते आई एहो ब्रह्म विचार सो जानै जिस दयाल होए भगवानै बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मिटाई सोरठ महला पंजवां पार ब्रह्म निभाई पूरी काई बात न रही आयूरी गुर चरण लाए निसतारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया हर

भया पर पूरी हेम कुशल भया इस नाना पार ब्रह्म वित्तो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास।

मिलत्याई है मन पाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जी।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरके पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पां बीरी के पात पर दो।

जैसा बालक पाए सुपाई लाख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

तब भेद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सबके।

कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई। तार अनग्रहो आप प्रभ स्वामी, पात मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांछो संतां तूरी। सोठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारी, प्रभ सबे काज सवारी, हरे अपनी किरपा तारी, प्रभ पूरन पैज सवारी, अपने दास को पयो सहाई।

भाव प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आगे सुख गुर।

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभु अविनाशी ताकी सेव न बिरथी जासी।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

तू प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद

रहाई, विघ्न गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भया कृ।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया किन सर्व

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

गावह पाई ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया। सोठ महला पंजवा गुरपुरा आराधे कार्ज सगले साधे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे। संत हो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया। रहाउ गुरपुरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोठ महला।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई घर सही सलामत आई संतोख भया संस

इन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाईए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहा तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई।

तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल बयाल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो।

मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गही रहाओ। दारा मीत पूत रथ संपत, धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्याए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जोग हारियो,

उदरी ता को जस उर धारु रहाउ अटल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि।

बिखियन को तावत केहे बिदरू को ताहि रहाव। बेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावे। पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावे। मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना। घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी। सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाव। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही एह सुख माया के उर्जे ओ कहां गवार। अज हूं

भूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे। जब ही निर्तन देखो नर कौ संग साड सब भागे। कहो कहां या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो। दीनानाथ सकल पै भंजन जसता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूदो।

कै तू ठह लागियो जन्मे अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग पौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

हरख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जग ते रह निरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक ली।

बिंद सुख वास्ती नाम वसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नामंग मस्त कलेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामंग कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामंग मन मुख झूठ लह पै मान आपे ज्ञान अगामंग जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिए भाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक भरम भलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा।

से भले प्यारे शब्द रखते रंग होए, किसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए, पत परवाना साच का प्यारी नाम सच्चा निशान, आया लिख लै जावना प्यारी हुक्मी हुक्म पछाण, गुर बिन हुक्म ना बूझिए प्यारी साचे साचा तान, हुक्मै अंदर निम्या प्यारी हुक्मै उधर मजार, हुक्मै अंदर जम्या प्यारी ऊंधो सिर कै भार।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नो प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हृदय शब्द ना भेजो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

भाई मिल प्रीतम साच समाव एत जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मुह देसी जाय किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्या नो लो भाई नाम समाल है सुख वसह भाई सदा सुख।

पंजवा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्ह उपाया पाई करन कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेवी है पाई भ्रम पौ होवै नास मिल संत सभा मन मांजी है पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै प्रगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस भावै ता मेल लय पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई एनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीविया पाई निश्चल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जियड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहिबै पाई हाँ तिसकै बल जाओ ओ निर्गुण आरे पालदा पाई देन थावे थाओ रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाम जिस गुर साचा भेटिए पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी ना जीविए पाई सर्ब कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै पाई पेखों सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्ब रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई भौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई कीतोन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार चोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी माया मोह बधाया जिसनो कीतो कर्म आप प्यारी तिस पूरा गुरु मलाया सो अरादे सास सास।

अरपाती रहो नगन फिरे हो बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत तराई मन की मैल ना उतरे एह बिद

फिर फिर जन्मे हर सिंह संग ना गया। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अखारा, तेज सोनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा। हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा, कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना। तेरो सेवक यह रंग माता भयो कृपाल दी।

ओरठ सदा सुहावनी, जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन, जीवै सच्चा सोए ससुरै पेयै पैवसी, सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले, खुशी रावै पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन, कदे ना मैल पतंग।

पुरख सुजान कुल उधारे अपना सोजन होवे परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सत संगत साधु लग

फुरमाइए हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। श्लोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास मोहठ गौली पाइन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेते हो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना

हरे आपे से टसवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाईंदा। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हऊ मैं बिचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजै लगे जाए तिसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए भेख धारी भेख कर थके अट अट तीरथ नहाए मन की सार ना जाननी हम मैं परम पलाए गुर प्रसादी भउ पया वडभाग वस्या मन आए पै पय मन वस हुआ हम मैं शब्द जलाए सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा द्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाय।

नानक नगरी बख्शले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाव, ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाव। नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी, जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड़ गया, ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया। हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया, गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार, जित खाद मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार। यो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार, ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार। ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल, नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए, आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए। नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी। बह सखियां जस गाव है गावन हारियां, हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारी।

नाम है सब परम दे नित जग तोता सहसार मन मुख कर्म कमावनी हम मैं अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा सहजे जागे सहजे सोवे गुरमुख अन देने उस्तत होवे मन मुख पर मैं सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे ज्ञानी जाग है सवह सुपाए नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आयु जित किस सोजी पाए ऋण डिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाए नानक शब्द पछाणी है।

पावड़ी, हर सज्जन मेल प्यारी, मिल पंथ दसाई, जो हर दसे मेता, किस हों बल जाई, गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम त्याई, हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई, बलिहारी सतगुर तिस, जिन सोजी पाई।

अचेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे। जमदर बदे मारियह फिर विस्ता माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान। हर कह नाए समाए रहे चूकाया मन जान। पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई। घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै काम ना आई। जन लाभ हो चेत हर नाम स्यों अंत होए सखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज्ज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जा पई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोल है हर हर राम नाम हर साती।

परमात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर

गुण निदान हर पाया सहज करे विचार। धन वापारी नानका जिस गुरमुख नाम आधार। महला तीजा बिन मन मारे कोहे ना सिजे वेखो को लिवलाय। भेख धारी तीरथ भव थके ना इहो मन मारे आ जाय। गुरमुख इहो मन जीवत मरे सच रह लिवलाय। नानक इस मन की मल इउं उतरे हमें शब्द जलाए पौड़ी। हर हर संत मिलो मेरे भाई हर नाम दृढ़ावहो एक किनका। हर हर श्रृंगार बनावहो हर जन हर कापड़ पहरो खिमका। ऐसा श्रृंगार मेरे प्रभ भावे हर लागे प्यारा प्रेमका। हर हर नाम बोलो दिन राती सब किल बिख काटे एक पलका। हर हर दयाल हुए जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। काला हुआ स्याह खनली धोती उजली ना होवे जे सौ धोवन पाह। गुर प्रसादी जीवत मरे उल्टी होवे।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जुग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

री जन उथारे तपियो सुत्या गई विहाय। सतगुर का शब्द सुनना जागियो अंतर नाय पुजियो चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कारण कमाय। जगत जलंदा डेठ मैं हम मैं दूजे पाय। नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

हर सेती मन रव रहया सच्चे रहे आसमाई नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे श्रृंगार फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी जो जप दे हर हर दिन सरात तिन्हों कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैण सलोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कै वस है ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे कर प्रीतम स्यो नेव किरपा कर कै सुनो प्रभ सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई भावदी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई सतगुर मिले ता पूरा पाईए हर रस रसन रसाई पौड़ी रैन दिन सप्रभात तू है ही गावना जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ लाया। स्लोक

यह नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नाम पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जा तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बता थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म होआ हासल तदे होए लिपड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नक नथ खसम हाथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्ला आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न आपे जंत उपाए आप प्रित पाल्यो न दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न नानक भगतां सदा आनंद भाओ दूजा जाल्यो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए हौ हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रहे हम मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाए आपे बख्श कर।

तेन निज करवास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सूरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूतपूर्व।

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाय जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्ह ना पाई दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

जाई। हमरा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाऊ बाजी गर डंक बजाई।

आई, सब कथ कथ रही लुकाई, जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हृदय रहे आसमाई, गुर किंचत कृपा कीनी,

गुरु राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहा ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया

तो पंच सहल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाऊ लौकी अठ सठ तीरथ नाही